0: नया नेपाल को नया रेडियो
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ट्ज।
2: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वर से रंगला निखली मैंगसुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फैफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अंक 77 रंगीर स्वागत मुला न वियोग तामाङ नल्ला पीड़ा देन विपत्ति दुई यांगसे यांगला अब परमेश्वर सामु मिखली से पुकार लब लानन महत्वपूर्ण मुला दोसरो इतिहास 2014 यदि नला रंगन मीन पिन्बा नला प्रजा से रंगदन नम्रा लासी प्रार्थना लमुला थेन्दे नदा मैसी रंगला दुष्ट चाल कदे ग्याम दो मुला तब ना स्वर्ग ग्याम थेनी गदेला प्रार्थना न्याला थेनी गदेला पाप क्षमा लाला थेन्दे थेनी गदेला लुईदा स्वास्थ्य तोला जब यांग परमेश्वर लच्छा रंगला नम्र सोला थेन्दे रोदा भावुक तासी प्रार्थना लाला परमेश्वर से यांगला मिखलीदा कचौरेरी भण्डारण लस्युमुला थेन्दे परमेश्वर से थे मिखिदा यांगला दुईरी मुक्तिला सुन सुबारी प्रयोग लस्युला भजन संग्रह 56:8 नला बिलाबला लेखा थन्स्युगो नला मिखली रंगला फिरिस्तारी थन्स्युगो तिग थे रंगला पुस्तक रि बिब आरे ओम चु प्रश्नला उत्तर थन्स्युला बिन हिम्बा बिबा परमेश्वर से यांगला निखली दन्स्युला थेन्दे परमेश्वर से भावुक निखली मुबा प्रार्थनाला जवा पिन्स्युला भजन संग्रह 34:17-18 जब धार्मिक मिगदेश पुकार लमुला तब परमेश्वर से न्यान्स्युमुला देन थेनी गदेला बेनन संकष्ट याम थेनी गदेदा उद्धार लस्युमुला चूर्ण तिन तबगदे बेननला नाम परम प्रभु मुस्युला देन निराश तबगदेदा परमेश्वर से सोना लस्युमुला दत्ते रंगला लाग्री लुई लानन निराशाजनक देन उदास नाङबरी हामला तासै रंगला अब परमेश्वर से रंगदा लानन माया लस्युमुला थेन्दे परमेश्वर से बेनन गलत ताम गदे ससप लस्युमुला चु लुई कदेरी जेखिन अहिन्बा तासै लानन रोदेन श्यामला यांगला भविष्यला अनन्त दिम्रियन प्रस्थान 21:3-4 थे याकरगिन हावा हिंसम याकरगिन सिगो थेसे ब्यालसी हा हावा बिस हिंसम थेला दुई एन थेनोन देन सिगो यदि थेला मालिक से थेदा खुई पिंजी बिसम थेसे जजन मेगादे नुआसी बिसम खुई देन जजन मेगादे थेला मालिकला तला देन थे जेखेन स्वतन्त्रतासी सिगो परमेश्वर लंगा मिखली ग्याम प्रार्थना लसुगो परमेश्वर से रंगला पीड़ा देन थे पीड़ा ग्याम रंगला क्रंदनला न्यनसुमला थेन्दे थेलिचा परमेश्वर से रंगदा रंगला तिंगला प्रियजन का देदा बाबा मुक्ति देन शांतिला प्रतीक्षा लसुगो भजन संग्रह 30:8 देन 11:12 हे परम प्रभु नाई रंगदा पुइजी परम प्रभुरी नोन दयाला लागरी पुइजी रंगसे नला बिलाप द श्यावरी परिवर्तन लसुजी रंगसे नला भांग्राला क्वान खनसुजी हेन्दे आनन्द क्वानसुजी चु तामसे कि नला सेमसे रंगला स्तुति गान लगाई देन चु थला सुगो थे परम प्रभु नला परमेश्वर ना हाई मदमन हाङ्री थुजेसे नक्षा बरब लसुला तिनी परमेश्वर द रंगला थोक द श्यावरी परिणत लवरी थन्सुगो थेन्दे रंगदा परमेश्वर द चुग्याम छुटकारा पिनबरी अनुमति दुनगो रोदा पुकार लस्युगो रंग नुङरी काते नकारात्मक आज्ञा भावना गदेदा विस्थापित प्रतिस्थापन लाबरी परमेश्वर से रंगला तिङरी भरब लाबरी सेम मुस्युमला भलाई याङस्युगो आमेन रंगिला जीवनरी परमेश्वर से लानन लानन आशिष पिन्सुगई धन्यवाद
3: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रम बारे रे रङ निला

0: केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम गन्दा सम्पर्क लसिगो गन्ना फोन नम्बर मुला 98685353 39। धन्यवाद। हस् त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जय मसी नमस्कार।
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: गोविन्द नगरपालिका तीन पुच्छार बजार थारिन एबाले चोकबाट छगर तल
1: काठमाडौँ जाने बाटोपट्टि
0: प्रोपाइटर राम थापा मगर सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9861705454
1: 9861705447

सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर 01052470 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा।

लस्सो है मेहबे फेबे मा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्ले रखोर मा नगा फारम मा असिम टमाटर की ट्रोनेल मा सिंगबे सूर सिंजेपल मुबा होले सिंगबे सूर मुसम ओम टंके सूर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरी मी दिम फिटिंग सिंगबे अंतरराष्ट्रीय स्तर ला जम्मनु सामान मा होलसेल मूल्यारी यंगबा असिम दिम सम्मन बोरबारी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इन्टरप्राइजेस धादिङ बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 010-520-470 असिम 98511-87-882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा।